बाबा फरीद जी सूफी फकीर जिन्हां दी बाणी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह विच साहिब गुरु अर्जन देव महाराज ने दर्ज कीती है। कहिंदे ने जिन्हां नूं अपनियां वड्याईयां दा कोई बंदा नेक काम करे ओहदी संसार वड्याई करदा है, कोई भला काम करे ओहदी वड्याई करदा है, ते जे अपनियां वड्याईयां वल वेख के ओ माण विच आ जावे तां साहिब सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी कहिंदी है भई ओ जिवें मूले धर्मी पैंदा होवे ता नीवे थां ता नकानक भर जांदे ने, उच्चे थां सुके दे सुके ही रह जांदे ने। एदां वड्याईयां करन वाला बंदा रब दियां बख्शां ते रहमतां तों एदां वांझा रह जांदा है जिवें ओ उच्चे टिब्बे रह जांदे ने।

तारीफ करदे ने। आम चंगे चंगे विद्वान पुरुषां ने गुरु महाराज ने भी धरती नूं माता कहा है। धरती बड़ी चंगे सुभा दी है। भाई साहब कहंदे ने इदां दा सुभा बना लै।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है? उसकी बहुत सी कारें हैं, उसकी बहुत फैक्ट्री है, उसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आज जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठन दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह मगर मगर संगता नू आउंदियां वेख तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया साडे पिछे की लैन आए हो, जाओ मुड़ जाओ करां नू सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां नू। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां नू। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती सोने दे ढेर ला देते, सोने दी मोरां ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे चांदी ते नहीं फिसले और सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरां चुके करानू चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है, ता गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लैके चले जाओ करानू, साडे पिछे आओगे ता कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात झोलियां विच भर के अपने अपने घरां नू चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए सोने चांदियां दे ढेर लाए हीरे जवरातां दे ढेर लाए आ सारे ही चोलियां भर के घरां नू मुड़ गए तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नू चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकदा। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठा लै आए लैणे नू, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। पाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई पाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावां, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कहा लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने पाई लैणे नूं कोल सदिया
अपने हिरदे नाल ला के पाई लैने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तां मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हन और की कहिंदे हन।

मालिक दे गुण बयान करदे ने, कहंदे ने हे प्रभु करता नहीं सकदा पर तुझ बुद्धि अनुसार तेरे गुणा दा इजहार कर रहा हां। कहंदे ने

पलकते गया पाताल नानक, नानक बिना जहान दी दिशा कोई ना, मशरक मगरिब जनूब शुमाल नानक, कदे काशी ते कदे प्रवेश मक्के, बनया सारे आंदा सांझी वाल।

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नूं हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने।

तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है, पर मैं मंगा की हे मालिक मैनू ओ दात दे।

ब्रह्मा एदियां पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्म पापी बिस्नडारी विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे ओ भोले नाथ शंकर फूलां विच वसदा है।

माता जी का कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई, साहिबजादे असहत अगह कष्ट सहारदे होए शहीदी पा गए, धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

जित कर हर कंत ना प्रगटे, पाठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस, सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दी जय नाम। हर मेलो स्वामी।

कंठ मिलिया हर ना हो, पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर ना हो, मन बेदिया चर

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणी है। सतगुर की रीसै होर कच्चू बिच्चू बोल दे से कूड़ी।

0: करते माँ राजू बाबा ऐ पड़े सन। मैं पूछा क्या लगे बड़ी लंबी कथा माँ तनवान दी है।
1: हाँ सुन, हरनाक्ष नांदा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान दी भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर को। भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफी पान का हुक्म दिता। ते प्रहलाद दे दिल विचों आवाज आई, पाले तत्ते थमा नु जफिया आपे तेनु राम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पाली पर ओदा वाल भी विंगा ना होया। गुस्से विच आके राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
0: मैं भी प्रहलाद बनांगी मां, भगवान दा जाप करांगी।
2: मेरी मेहनत मेरी औलाद पुठे पाठ पढ़ाया जा

पाटिल जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव।

ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन दे पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावें जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला गावें सनकाद साध सिदादक मुन जन गावें अछल छला गावें गुण तोम अटल मंडलोए भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जो राजे जिनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जिनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जिनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की और भगत वड्डा क्यों गिनिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखे। साथ संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरा दा जिक्र राजा जनक देव लोक नूं गया, देवते भी लोचदे हन कि कोई जपण वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नूं देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया ए कौन रो रहे हन, देवत्या ने दस्या महाराज ए नरक हन जिथे पए हुए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोग दे, क्योंकि इना जिया ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इना ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तो भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तो भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया। ताई आखिया

कागज तुसा दे लेख दे आ गए तुसानू समझौ दे कल दे देखांगे तसीरे तुसी किवें नहीं चल दे आप दिया पंडा ने जलाद बन दे

उतना बारंबार जो बंसल पके पोंगिरे बोरना लगेगा जो बंसल पके पोंगिरे बोरना लगेगा गुरु सेवा पे पद कमाई तब ए मानस दे ही पाई मानस जन्म अमोल पायो वृथा काहे गवाओ गुरु सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस दे ही पाई इस देह को सिवरे देव सदे पज हर किसे पजो गोविंद भूल मत जाओ पजो गोविंद भूल मत जाओ मन चमका लाओ

जब लगो बिकल पाई नहीं बाणी पजल रे मन सारे पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना पजिया जाई ए तेरे अवसर ए तेरी बार ए तेरे अवसर ए तेरे बार कट पीतर तू देख विचार

सारो एतन मिथ्या जानो या भीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो पई प्राप्त मान देख लिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के नरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के नरार्थ दाम। फिरत बोते जुगहारे हो, फिरत बहुत।

दरगाह में वह खेप तुम्हारी एकाटेक रखो मन माहे। नानक बोल आवे जा एक।

नई बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहाँ जहाँ पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे।

दुनिया के सब रंग सतनाम श्री वाहगुरु के अंदर गावे। जिसने नाम जपा उसे फिर और किसी मस्ती की जरूरत नहीं रहती। शराबी को मस्ती है, जुआरी को मस्ती है। बाबा जी कहते हैं ये मस्ती जब आ जाए तो फिर इतने आनंद में डूब जाता है इंसान, किसी ओछे रस में आनंद नहीं आता उसे। हजूर कहते हैं मिलता